0: celebrating 36 years of excellence.
1: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
2: Sunrise Radio.
3: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज। 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
4: यू, yeah you, listening to the radio, up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up, and
5: it could be you.
4: Yeah, what he said.

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे। बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को।

0: celebrating 36 years of excellence. Music. This is Sunrise with the latest news headlines. Next, Sunrise Radio. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets, and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
1: My mum started cooking with khanam ki in the 70s. Dal makhni, butter chicken. These have been my family's favorite dishes. Using khanam ki for three generations. Khanam ki, the legacy lives on.
0: Khanam Ghee, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian stores.
2: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है. ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर. सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35

0: Listener's Choice, brought to you by Colours TV.
1: Watch Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday, 8 PM on Colours TV, powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर इज फ्रॉम अ फिल्म दैट केम आउट इन मार्च दिस ईयर. इट डिडंट डू मच फॉर जुनैद खान्स करियर, इफ आई एम कंप्लीटली ऑनेस्ट, बट यू नो व्हाट, दिस फिल्म स्टार जुनैद खान एंड साई पल्लवी. साई पल्लवी ऑफ कोर्स इज द एक्ट्रेस हु प्लेज सीता जी इन रामायण. एक दिन ख्वाब देखूं, अरिजीत सिंह, तरन्नुम मलिक जैन ऑन द यूके बिगेस्ट स्टेशन मेक्स. गुड मॉर्निंग.

0: शबनम साही ऑन सनराइज विद गुल्लक ऑन सोनी टीवी. एक चम्मच थी लव लाफ्टर एंड अ लिटिल फैमिली केओस. दिस इज अ शो दैट यू विल इंस्टेंटली रिलेट टू. वॉच गुल्लक स्टार्टिंग दिस संडे 9 PM ऑन सोनी टीवी.
1: माय मम स्टार्टेड कुकिंग विद खानम की इन द 70s. दाल मखनी, बटर चिकन, दीज हैव बीन माय फैमिलीज फेवरेट डिशेस यूजिंग खानम घी फॉर 3 generations. खानम घी, द लेगेसी लिव्स ऑन.
2: खानम घी, अ ब्रांड फ्रॉम SOP इंटरनेशनल, अवेलेबल एट ऑल major supermarkets and your trusted local Asian stores.
3: South All Travel invites you to Dubai, where world-class hospitality, stunning resorts and iconic attractions await. From beaches to desert adventures, there's something for everyone, all at unbeatable prices. Call 0208 574 8410. South All Travel, at all protected.
4: South All Travel can take you there.
1: The Gold Bank, a leading gold bullion company, brings you peace of mind when purchasing gold with its very own fine scan technology featuring unique serial identification on the Phoenix Gold Bar, produced by the Gold Bank. For more details about the Phoenix Gold Bar and to find our list of exclusive jewelry store dealers, visit goldbank.co.uk.
5: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up, and
6: it could be you.
5: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
1: My mum started cooking with khanam ghee in the 70s. Dal makhni, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using khanam ghee for 3 generations. The aroma, that creamy melt in your mouth. Satisfying taste. Ah, now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
7: Mum, is the dinner ready? As I can smell the khanam ghee.
1: Khanam Ghee, the legacy lives on.
2: Khanam Ghee, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.
8: In 10 meters, take a left at the pile of washing.
9: Sorry, what?
8: At the Valley of Toy Dinosaurs, approach the kitchen with no room to cook.
9: Huh?
8: Turn right at the floor drove.
9: A floor?
8: You've reached chaos. Recalculating.
9: No,
8: suggest immediate course correction to IKEA for fitted wardrobes, children's storage and cupboard organizers.
10: Find your way back to calm. Discover smart storage at your local IKEA now. IKEA. The wonderful everyday.
11: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
9: 25? Seriously?
11: Sounds like Ojo time.
9: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
11: Sorry about the wait. How can I help?
9: You can help me celebrate. I won.
12: Feel the fun. Play Ojo.
13: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
0: लोग कहते हैं ना, एक से भले दो. जस भी ऐसा ही कुछ सोचा था. बट एक बीवी एक गर्लफ्रेंड को लेकर जस की लाइफ में डबल इश्क और डबल ट्रबल. क्यों? क्योंकि है जवानी तो इश्क होना है. ओनली ऑन Z5.
1: माई मम स्टार्टेड कुकिंग विद खानम की इन द 70s. दाल मखनी, बटर चिकन, दीज हैव बीन माई फैमिलीज फेवरेट डिशेस यूजिंग खानम घी फॉर 3 generations. खानम घी, द लेगेसी लिव्स ऑन.
2: खानम घी, अ ब्रांड फ्रॉम SOP इंटरनेशनल, अवेलेबल एट ऑल मेजर सुपरमार्केट्स एंड योर ट्रस्टेड लोकल एशियन स्टोर्स.
0: शबनम साही ऑन सनराइज विद गुल्लक ऑन सोनी टीवी.
14: एक चम्मच थी
0: लव, लाफ्टर एंड अ लिटिल फैमिली केओस. दिस इज अ शो दैट यू विल इंस्टेंटली रिलेट टू. वॉच गुल्लक स्टार्टिंग दिस संडे 9 PM ऑन सोनी टीवी.
2: This is Sunrise, the UK's biggest.
15: What chumka? What chumka?
2: Asian.

0: कविता ऑन सनराइज विद गुल्लक ऑन सोनी टीवी. एक चम्मच थी लव लाफ्टर एंड अ लिटिल फैमिली केओस. दिस इज अ शो दैट यू विल इंस्टेंटली रिलेट टू. वॉच गुल्लक स्टार्टिंग दिस संडे 9 PM ऑन सोनी टीवी.
1: माय मॉम स्टार्टेड कुकिंग विद खानम की इन द 70s. दाल मखनी, बटर चिकन, दीज हैव बीन माय फैमिलीज फेवरेट डिशेस यूजिंग खानम घी फॉर 3 generations. खानम घी, द लेगेसी लिव्स ऑन.
2: खानम घी, अ ब्रांड फ्रॉम SOP इंटरनेशनल, अवेलेबल एट ऑल मेजर सुपरमार्केट्स एंड योर ट्रस्टेड लोकल एशियन स्टोर्स.
1: sonatours.co.uk. 14 डेज कैनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027. बुक बिफोर द एंड ऑफ जुलाई एंड गेट 600 ऑफ. कॉल सोनाटूर्स ऑन 0208-951-0111. आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा. घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं. मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज. 28 वॉटफर्ड रोड, वेम्बली. ओपन ट्यूजडे टू संडे.
3: हाय, मैं हूँ करीना कपूर खान. आई लव हाउ एवरीथिंग टर्न्स गोल्डन ड्यूरिंग समर, इंक्लूडिंग द गोल्डन ऑफर्स फ्रॉम मलाबार गोल्डन डायमंड्स. अब पाइए फ्री कैश वाउचर्स विद हर डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस वर्थ £750 और एंजॉय कीजिए 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ 22-carat गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर. विजिट मलाबार गोल्डन डायमंड्स शोरूम एट ग्रीन स्ट्रीट, ईस्ट लंदन एंड ब्रॉडवे, साउथ हॉल.
4: इन 10 meters, टेक अ लेफ्ट एट द पाइल ऑफ वॉशिंग.
5: सॉरी, व्हाट?
4: At the Valley of Toy Dinosaurs, approach the kitchen with no room to cook.
5: Huh?
4: Turn right at the floor drove.
5: A floor drove?
4: You've reached chaos. Recalculating.
5: No,
4: suggest immediate course correction to IKEA for fitted wardrobes, children's storage, and cupboard organizers.
6: Find your way back to calm. Discover smart storage at your local IKEA now. IKEA, the wonderful everyday.
7: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio, up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up, and
8: it could be you.
7: Yeah, what he said. Lotto from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
9: Dad, where have you been?
10: I went to supermarket. Snack shack chai darsi. Big cricket match today on TV and movie afterwards.
9: We had popcorn and crisps, Dad.
10: I'm a desi. I need my Indian snacks. Supermarket with chatwal milia.
9: Uncle Chatwal?
10: Nahi, chatwal de namkeen range. Plain bhujia, alu bhujia, khatta meetha, neemu masala, navratan mix and moong dal. Oye, main full selection chak le aaya.
2: Chatwal's mazedar spicy Indian snacks. A brand from SOP International. Now available at major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets. Enjoy with family and friends.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. My mom started cooking with Khanam ki in the 70s. Dal makhni, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using Khanam ghee for 3 generations. Khanam ghee, the legacy lives on.
2: Khanam ghee, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian stores.
0: Kavita on Sunrise with Gullak on Sony TV. Love, laughter and a little family chaos. This is a show that you will instantly relate to. Watch Gullak starting this Sunday 9 PM on Sony TV.
11: Sunrise Radio.
12: Happy birthday to multi-award winning Bollywood actress Kiara Advani. And for those celebrating their birthday today, let's celebrate with delicious mithai from Ambala Sweets.
13: Birthday greetings from Ambala Sweets. No need to fly back home this summer. Come to Ambala for our 2-ingredient Khoya Burfi, made from pure buffalo milk, just like the burfi you get back home, but crafted in England. Taste it for free this month. We also have the best Garak Chai, Masala Chai and Elechi Chai. Just like back home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.

बांधा दिल तेरा ले कहीं तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रेयान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADशा नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना